0: रेडियो मिरमिरे 89.4
1: मेगाहर्ज।
2: होइन के आउँछ रे, कुन रेडियोमा आउने हो
1: नि?